पवन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे। से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले।

भाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना ज्यों तिस दी वडियाई ज्यों तिस पावै सोई करसी फिर हुक्म ना।

भंडारा जिस तू देहे तिसै क्या चारा नानक सच सवारण हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाओ आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लागै भूख उत भूख खाए चली है दुख।

रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरधा हर प्यास, हर हर नाम मिलै तृपता सह, मिल संगत गुण परगास।

त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर

कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मान पाओ करया। ऊडे ऊड आवै सै पूसा, तिस पाछ बचरे शरया। तिन कवण खलावै कवण चुगावै, मन मह सिमरन करया। सब निधान दस अष्ट

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना।

कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निह चल करता सोई, तुदे आपे भावे सोई वरतै जी, तू आपे कर है सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार, मेंढा साई जो तौ पावे सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सबने त्याया, जिसनु कृपा करहै तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण साद ही आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबेउ बाच बेनती चौ पई। हमरी करो हाथ दय रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो।

काचीनत नह पेव आप आपुनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पायो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी पुत पूज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संक्र इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचम पहव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो राण खाता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे पुरख जवन पाग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताकि काल निकट नह आय है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टर तत् काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके पाप तनक मोह हरे हो रित सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सकै ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते

हो सहाई, दुष्ट दुख पे ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहुपे।

सो क्यों मन हो बेसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिनकै मन वसया, वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर सात सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वासो कीते, काल कंटुक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे। कह नानक कह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुने सची बाणी, संत साजन भये सरसे।

जल मथ कर हर कर्म सर्वन हर कथा हर धर गय नान कियो जल मथा वाहे गुरु मुंदा संतोख सरम पत चोली ध्यान की करें बेपूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा परतीत आई पंथी सगल जमती मन जीत जग जीत आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग

हर हर जन कै मालक जीना, हर तन जन को आप प्रभु दीना, हर हर जन कै ऊठ सुतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोजन हर रस राते, सुन समाद नाम रसमाते, आठ पैर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं जपे, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लत्ता, नाम की महिमा संत ऋत वसै, संत प्रताप दुर्ग सब नसै, संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर न हुए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को, श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरति, पेखे सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमरत वख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्यागन मध्य फिरया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, व्रत नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिय कबार, नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, माँ उदास तपि सरती वै, अग्न माहि होमत प्राण, कनिक सब है वरपूर्ण दान, न्यौली कर्म करै बहु वासन, जैन मार्ग संयम साधन, निमख निम कर शरीर कटावै, तौ भी होमे मैल न जावै, हर के नाम समसर कछ नाहि, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि, मन कामना तीर्थ दे छुट्टै, गर्व गुमाना मन ते उठै, सोच करे दिन सरात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखे अटरे, जल तू है बहु देह अनीत, शुद्ध का होय काची पीत, मन हर के नाम की मैं माऊच, नानक नाम उदरे पतत पाऊच, बहु सियान जम का पौ व्यापै, अनेक जतन कर तृष्णा त्रापै, पेख ने गगन बुझै कूट पाव दर गैनी सीजै, झूठ सुनायु पयाल, मुहि व्यापै माया जाल, अवर करतूत सगली जमडान, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे, साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सदगावे, जी को अपनी शोभा लोरै, सा संगे हम मैं छोरै, जे को जन मरण ते डरै, सा जना की सरनी परै, जिस जन को प्रभु दर्श पे आसा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जा का मिटै अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गणिये सब ते उच्चा, जा का मन हुई सगल की रीना, हर हर नाम तिन कट कट छीना, मने अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल सुरस साजना, सो दूजन समदृष्टिता, नानक पापुन नहीं लेपा, निरतन को तन तेरो नाऊ, निथावे को नाऊ तेरा थाऊ, निमाने को प्रभ तेरो मानो, सगल कटा को देव दान, करण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गातमित जन हुआ पे, अपन संगा प्रभराते, तुम रिष्ट तुम ते हो, नान कवर न जान सकोय, सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, सासंग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्दम मैं उद्दम पला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी मैं अमृत बानी, हर को जसुन रसन बखानी, सगल थान ते उत्तम थानो, नानक जी कट वसै हर नाम, श्लोक निर्गुण यार एयानिया, सो प्रभ सदा संभाल, जिन किया तिस चीत रख, नानक निभि नालो, अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू सा सुवार सिगारिया, गर्भ अग्न में जिने उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे, दूध भर जो बन भोजन सुख सूध, बिरद पया ऊपर साख सैन, मुख पया बैठ को दैन, एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श ले हो तो नानक सीजै, जेह प्रसाद धारू पर सुख बसै, सुत प्रात मीत बनता संग हसै, जे प्रसाद पी वह शीतल जला,
सुखदाई पवन पाव कमुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसे त्यागवर संरचना ऐसे दोख मुड़ंद व्याप्य नान काट ले हो प्रव्यापे आदंत जो रखनहार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावे तासो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर ससदा हजूरे ताको वंदा जानत दूरे जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे विसार मुग्ध जान सदा सदा भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्या कौटी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छिड़ना सुअस्थिर करमानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द विपरीत भस्म संग होए अंधकूप में पतत विकराल नानक काढ़ लिहु प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पछारा करै दिन रात बाहर भेगंतर मल माया छिप सुनाए कछ करै छुपाया बार ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुहान बाहर भेगंतर मल माया छिप सुनाए कछ करै छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान इसनान अंतर व्यापै लोभ सुहान अंतर अग्न बाहर तुम स्वाहा गल पात्र कैसे तरह अथाह जाके अंतर बसै प्रभ्याप नानक तेजन सह समात सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गहले हो उड़ निभावै कहा बुझार दबू जय डोरा निस कही है तू समझे पूरा कहा विष्ण पद गावै गुंग जितन कर तौ भी सुर भंग कै पिंगुल पर्वत पर भवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा करै संग सहाई सुहावे न चीत जो बैराई त्यो प्रीत बलवा के गृह पीतर बसै अनंत केल माया रंग रसै दृढ़ कर मन मन प्रतीत काल न आवै मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह आहो जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पहे अरदास जीव पिंड सब तेरी रास तुम बात पिता हम बारग तेरे तुमरी कृपा में सुख अनेरे कोय न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते हो सुआज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जानी नानक दास दा कुरबानी श्लोक देन हार प्रभु छोड़ कै लाग है आन सुवाई नानक नसी जई बिन नावै पत जाय अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्तु कारण विकोट गवावै एक भी न दे दस भी हिर ले तो मूड़ा कौ कहा करे इष्टा कुरस्यो नाहि चारा ताको की जय सद नमस्कार जाके मन लागा ब्रह्मीठा सर्व सुख ताहु मन उठा जिस जन अपना हुक्म नाया सर्व सुख नानक तिन पाया गंत साहु अपनी देरा उसकात पीत बरतै अन दुलास अपनी मान कछ बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोष करे अपनी प्रतीता पही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे जिसकी बस किसी आज्ञा राखे प्रभ की आज्ञा माने मत है उसते चौगुण करे निहाल नानक साहिब सदा दया अनिक भांत माया के हेत सर पर होत जान अनित बिरखि छाया स्यो रंग लावे उबिन सैव मन पछतावे ज्योति से सो चालन हार लपट्रियो तय अंध अंधार बठाओ सो जो लावे नेहिता को आतना वह के मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन तन कुटम सुभाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजोवन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या पशु पर कर्त गुमान अस्त्र पग सात की सर नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्व को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपास मिथ्या रसना भोजन अन सुवाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तन पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल दे नानक हर हर नाम ले वृति सागत की आर जा साच बिना कह होत सूचा
ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਧਨਿਆਂਦ ਮੁਕਾਓ ਤਾਕੈ ਦੁਰਗੰਧ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਜਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ ਜੋ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਜੰਜੀ ਕਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਓ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਰਹਿਤ ਅਵਰ ਕਛ ਅਵਰ ਕਮਾਵਤ ਮਨੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਖੋ ਗੰਡ ਲਾਵਤ ਜਨ ਨਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਬੀਨ ਬਾਹਰ ਭੇਕ ਨ ਕਾਹੂ ਭੀਨ ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਨ ਕਰੈ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨ ਮੈ ਮਰੈ ਇਸਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਿਸਕੀ ਸੀਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਤੁਮ ਭਾਨੀ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਚਰਨ ਪਰਾਤਾ ਕਰੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਭ ਜਾਣੈ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆਇਆ ਪਹਿਮਾਨੈ ਆਪਹਿ ਆਪ ਕਰਤ ਨਵੇਰਾ ਕਿਸੈ ਦੂਰ ਜਨਾਵਤ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਵਤ ਨੇਰਾ ਭਾਵ ਸਿਆਨ ਸਗਲ ਤੇ ਰਹਿਤ ਸਭ ਕਾ ਜਾਣੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਿਤ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਨੇ ਲੜ ਲਾਏ ਕਾਂਤ ਨੰਤਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਜਪ ਨਾਨਕ ਹਰੀ ਸਲੋਕ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹੰ ਮੇਵ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੌ ਰਖ ਮਨਵਾਹੇ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਥਨ ਲਾਵੈ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੈ ਧਿਆਇ ਸਦਾ ਮਨੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੁਖ ਬਸਨਾ ਅਠ ਪੈਰ ਚਿਮਰੋ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰੰਗ ਰਸ ਭੋਗ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਧਿਆਵਨ ਜੋਗ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਠ ਪਟੰਬਰ ਹੰਡਾਵੈ ਤਿਸੈ ਧਿਆ ਕਤਵਰ ਲੁਭਾਵੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸੇਜ ਸੁਜੈ ਮਨ ਆਠ ਪੈਰ ਤਾਕਾ ਜਸ ਗਾ ਵੀਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸਭ ਕੋ ਮਾਨੈ ਮੁਖਤਾ ਕੋ ਜਸ ਰਸਨ ਬਖਾਨੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੋ ਰਹਿਤਾ ਧਰਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਜਪ ਦਰ ਕੈ ਮਾਨ ਪਾਵੈ ਨਾਨਕ ਪਤ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੂ ਕੰਚਨ ਦੇਹੀ ਲਾਵੋ ਤਿਸ ਰਾਮ ਸੁਨੇਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਉਲਾ ਰਹਿਤ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਕਹਿਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸਗਲ ਛਿਦਰ ਢਾਕੇ ਮਨ ਸਰਨੀ ਪਰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੁਝ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਮਨ ਸਾ ਸਾ ਸਿਮਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਉੱਚੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਏ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੀ ਨਾਨਕ ਤਾਕੀ ਭਗਤ ਕਰੇਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆ ਭੁੱਖਨ ਪਹਿਰੀ ਜੈ ਮਨ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਕਿਉਂ ਆਲਸ ਕੀ ਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸਵ ਹਸਤ ਸਵਾਰੀ ਮਨ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਬਹੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਗ ਮਿਲਕ ਧਨਾ ਰਾਖ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਮਨਾ ਜਿਨ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਉਠਤ ਬੈਠ ਸਤ ਸਹਿ ਧਿਆਈ ਤਿਸੈ ਧਿਆਏ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਆਂ ਊਹਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰੱਖੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰੈ ਪੁੰਨ ਬਹੁਦਾਨ ਮਨਾਟ ਫਿਰ ਕਰ ਤਿਸ ਕਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਾ ਸਾ ਚਿਤਾਰੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਅਨੂਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੀ ਪਤਰ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਜਸ ਕਹਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਣੈ ਕਰਨ ਨਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਖੈ ਬਿਸਮਾਦ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚਲੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਪੂਰਨ ਫਲੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਸਭ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਵਰਕਤ ਲਾਗੋ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੇ ਮਨ ਮੂਟ ਦੂਤਾ ਕੋ ਜਾਪ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਤਿਸੈ ਜਾਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੈ ਸਾਚ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾ ਸਿਉ ਰਾਚ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਸੋਏ ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੈ ਸੋ ਨਾਉ ਆਪ ਗਾਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੈ ਮਨ ਸੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ ਤੇ ਮਾਤੂਥਮ ਹੋਏ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਆਪੂ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂੰ ਲਿਆ

जो कहे सुमुक्ता हुई। सुन मीता नानक बिनवंता साधना किए चर्ज कथा अष्ट परी। साध गसंग कूजल होत साध संग मिल सगली कोत साध गसंग मिटै विमान साध गसंग प्रगटै सुज्ञान साध गसंग बुझै ब्रह्म नीरा साध संग सब होत नबेरा साध गसंग पाई नाम रतन साध गसंग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा परमाई सुमानी साध गसंग गोचर मिलै साध गसंग सदा प्रफुल्लै साध गसंगा वै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग सब की रेन साध गसंग मनोहर वै साध गसंग न कतुहता वै साध संग स्थित मन पावै साध गसंग माया ते पिन साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न साध संग दुश्मन समीर साधु कै संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैरु साध गसंग न बीगा पैरु साध गसंग नाही कुमंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग नहीं नाही हो ताप साधक संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नाम साध प्रभु बने आई साधक संग न कब हूं तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस्त गोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साधक संग बसै तान उचै साधु कै संग महल पहुंचै साधक संग दिड़ै सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुठम निस्तारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को बरसावै साध संग धर्म राय करि सेवा साधक संग सोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जनामु साध के संग नहीं कचकाल दर्शन पेट होत निहाल साध के संग कलुखत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग यहाँ उहां सुहेला साध संग बिछड़त हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग ना बिरथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध के संग सुनु हर नाउ साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसरे साध संग सर पर निस्तर है साध के संग लगे प्रमीठा साधु कै संग कट कट डीठा साध संग कै आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध के संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेद न जान है जिता सुने जिता बख्या नहीं साध की उपमा त्यो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उचते उची साध की शोभा मूचते मुची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलो मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखे किस बिन कोए नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी कह दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुल भवान ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जेग ज्यों बसदा को खुद को चंद लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुणाओ नानक ज्यों पावक का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला।

नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेकर एक रंग नाना बिडकिनो बिस्तार प्रभ बनासी एक अंकार नाना चलत करे खिन वाहे पूरे पूर्ण सब ठाए नाना बिरकर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगलाकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख सब माहे समानी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरु ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर दे प्रवेश सत निरत बुझै जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिरसो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक जो तिस भाव है सो वरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्मार जिन बूझया तिस आया स्वाद रब कै रंग राजन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुखटनहार जा कै संग थरै संसार जन का सेवक सो वडभागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत भिखन हार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सवधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को सत सब हुए नानक सत सत प्रभ सोए

तत् ज्ञान तुझ मन प्रगटाया। भय ते निर्भउ हुए बसाना, जिस ते उपजिया तिस माहि सुमाना। वस्त माहि ले वस्त गडाई, ताको भिन्न न कहना जाई। बुझ है बुझनहार विवेक, नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम कै रंग। सेवक को प्रपाल नहारा, सेवक की राख्य निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभु धार है, नानक सो सेवक साथ साथ सुमार है। अपने जन का पर्दा ढक है, अपने सेवक की सर पर रख है। अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आपत रख है, ताकि गतमित कोई न लख है। प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक उचते उचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया। निकी कीरी में कल रख है, भस्म कर लश्कर कोट लख है। जिसका सास न काटता, ताको रख दे करात। मानस जतन करत बहुभात, तिसके करत बिरते जात। मारन रख है वर न कोए, सर्व जिया का रखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रबल विडाणी। बारंबार बार प्रभु जपी है, पी अमृत्यु मंथन तृपी है। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसकी चवर नाहीं दृष्टाया। नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग। नाम रजो जन तृप्ताने मंत, नाम मह नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सुध काम। बोलो हो जासो जेहबा दिन रात, प्रभ अपने जन की नींदात। करे भगत आत्म कह चाय, प्रभ अपने सो रह समाये। जो हुआ हुवत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने। किसकी महिमा कौन बकानो, किसका गुण कह एक न जानू। आठ पैर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे। मन मेरे तिन की उठले हे, मन तन अपना तिन जन दे हे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर सब पा मिटावे। अवर से अनुभ सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जाना हो भी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद भैरा। श्लोक सतपुरख जिन जाने, सतगुर तिसका नाओ। तिस कै संग सिख उतरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर सिक्की करै प्रतपाल। सेवक को गुर सदा दयाल, सिक्की गुर दुरमत मल ही रह। गुर वचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिक्के बंधन काटै। गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिक्को नाम धन दे। गुर का सिख वड भागी है, सतगुर सिक्का हलत पल सवार है। नानक सतगुर सिक्को जी नाल सुमार है। गुर कै गृह जीवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। आप उसको कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन बिचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य राव। सेवा करत हुए निकामी, जिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेव गुर की मत ले। बीस विश्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुरु जिस हृदय हर नाव, अनित बार गुर को।

ब्रह्म विकै आप नहीं कछ परमो। सहस्यान प्रलया न जाइए नानक ऐसा गुरुवड भागी पाइय सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेटत संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर गह गवे सुन कर बचन करन आघाने मन संतोखा तुम पथियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्टि पे कह हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भाव है तिसलय मिलाए। जीवाय कुस्तन एक सतपुर पूर्ण भवे काहु बोलना पवचित प्राणी गम गोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत के न पाई अनक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमर है सदबलिहारी सदगुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने वरस पावे जन कुए अमृत पीवे अमर सो हुए उस पुर का ना ही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुंता आठ पैर हर का नाम ले सच बदे शिव को दे मोह माया के संग न ले मन में रखे हर हरे कंद कर दीप प्रकाशी नानक परमो दुख तह थे ना से तब तुम्हारे ठाट वरताई अनंत भया दुख नाटे भाई जन मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पहु चुका निरपहु हुए बसे सगल व्याद मन ते खै नसे जिसका सातिन कृपा तारी सा संग जप नाम मुरारी तित पाए चुके परम गवन सुन नानक हर हर जो श्रवण निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने चित प्रभाव बनाए अपने कीमत आपे पाए हर बिन दूजा ना ही कोए सर्व निरंतर इको सोए ओत पोत रवे रूप रंग भय प्रगा साथ कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनिक बार नानक बलिहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक एहो तन सार। अष्टपदी संत जना मिलकर हो विचार एक सिमरनाम आधार अवर उपाव समीत विसारू चरण कमल रिद मै उतारू करण कारण सो प्रभ सम्रत दृढ़ कर गहो हो नाम हरवत एहो तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रख मन बाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन कहो चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाचे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनिक उपावी रोग न जाय रोग मिटे हर कद लाए सर्व निदान में हर नाम निदान जब नानक दरगे परवान मन प्रबुद्ध हर कहनाए दास तावता बैठाए ताकु बिघन लागे कोई जा कर दे बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूर्ण व्यास भगत पाया तुम प्रगास तित कारु जाय बसे बनासी कौ नानक काटी जमपासी तत विचार कह जन साचा जन्म मरै सुखा चुका चा आवा गवन मिटे प्रसिव आप त्याग शरण गुरुदेव नवरतन जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनिक पावना छुटन हारे सिमर शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चाल स्थिर है तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटम्ब रवन था इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो हो कवन छुटकार असा तीरथ सवारी झूठा डम झूठ पासारी जिंदी तिस बुझे न बिगाना नाम विसार नानक पुछताना गुर की मत तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे स्याने हर की भगत करहु मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माही जन्म जन्म के किल बिक जाए आप जपु हमरा नाम जपाओ सुनत कैत रहत गत पाओ सार पूछत हर को नाओ सह सुभाए नानु गुण गाओ गुण गाओ तिल त्रस मैलो बिन सुझाए हो मैं बिक फैल ओहे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रासर नाम संभाल छाड़ सियान सगली मना सा संग पावे सच तना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दर गह जय का सर्व निरंतर इको देख
कहु नानक जाके मस्तक लीके को जपे को साला एक सिमर को मन आहे। एक के गुण गाओ अनंत मंत्रन जाप एक भगवंत एको एक एक हरि आप पूरन पूरहो प्रभ आप अनेक विस्तार एक ते पहे एक रात प्राचत गए मंत्रन अंतर एक प्रवरता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपति। जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो धूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाओ साथ साथ प्रभ मैं त्याहूं चरण कमल से लागे प्रीत भगत करूं प्रभ की नित नीत एको टेको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभ की दृष्ट मां सुख हुए हरस पावे बिरला कोई जिन चाके असे जन त्रिपताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग जय चाव साध कै संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रगास अंदिन लिवलाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवकी मनसा पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवकीनो सदा निहाल। बंधन काड मुख जन भया जन मरण दुख भ्रम गया चुनी श्रद्धा सब पूरी रव रया सत्संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए। सो क्यों बिसरै जी काल न पाने सो क्यों बिसरै जी किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किश्तिया सो क्यों बिसरै जी जीवन जिया सो क्यों बिसरै जी अगन मैं राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जी बिकते काटै जन्म जन्म का टूटा गाटै गुर पूरै तति है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एका आन त्याग जपू हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपू हर नाम जपावो भगत भाई तरिए संसार बिन भगति तन होसी चार। सर्व कल्याण सुख नित नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुखा होत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाहो मंतन अंतर ही सुहाओ नित्र उपेगदर सुख होए मन विकसे सा चरण तुए भगजना कै मंत्र रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर मया गुरु प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाई नानक रहा सर्व समाये। प्रभ संग दीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आत्पुर कारण करताल भगजना कै प्राण धार जो जो जपै सोहे पुनीत भगत पाए लावे मनहीत हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए निम करके गुण गाए अनिक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का पुर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत सा संप्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सर्वगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपति। जब कार्य कछ न दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस अंकमात जब इसका वर्ण चिहन न जापत तब हर्क शोक किसह व्यापत जब अपन आपा फार ब्रह्म तब मोह आक सोवत भरम अपन केला वर्ती जा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंध मुक्त कौ किस को गनी जब एक रगम पार तब नरक सुर को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरै तब कवन निडर कवन कत डरै अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम पार अविनाशी सुख अपनासन तै जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए
जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे अपना पापी चर जा नानक अपन रूपा पियु पर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो हो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वा तय कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल चिदर लगत को कीश जय जो स्वरूपी जो संग समावै तय किस भूकवन त्रिपतावै करण करावन करण नानक करते का नाही समार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बा मित्र सुत भाई जय सर्व कलाया पै परवीन तय वेद देव कहा कूची जब अपन आपा पुर धार है तू सगन सगन कहा विचार है जे अपन ऊंचा अपन अपनेरा ते कौन ठाकुर कौन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप ये अचल चेद भेष माया उहां किसे व्यापत माया आपस को आप है आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश जह कह एक एक भगवंता तय कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपन आपा पतियारा तय कौन कतै कौन सुन नैहारा बहु बेअंत उच ते उचा नानक आपस को आप है पहुंचा जय प्रचो प्रपंच कार त्यो गुण में तीनों विस्तार पापुन ते पई कहावत को नर को सुर्ग बंचावताल जाल माया जिंजाल हूं मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की उपज्ञान अपन खेला कर दिख है केवल संकोच है तो नानक है जय अभिगत भगत है आप जय पसरे पसार संत प्रताप दुहू पाका आप है तनी उनकी शोभा नुह बनी आप है कौत कर आनंद चो जो आप है रस भोग निर्जोग जिस भाव है तिस अपन ना इलावै जिस भाव है तिस खेल खिलावै बेशुमार था गंत अतुलै ज्यो बुलाव हो त्यो नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानके को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपे का विस्तार जात इस भावै ता सृष्ट उपाय अपने भाणे लई समाए तुम ते बिन नहीं किच होए अपन सु सब जगत परोए जाको प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का विता नानक सगल सृष्ट का जीता जी जंत्र सुभता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस रखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहा को जाए सब श्री एक निरंजन राय जी की जुगत जा कैस भात अंतर बाहर जान हो साथ वो निदान बेअंत अपार नानक दास दा भलियार पूर्ण पूरे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाल जीन बहुपात जो जो रचियो सुत सहत्यात जिस भावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक इक जानिया जन लागा हरे कहनाई जिसकी आसन बिरथी जाए सेवक को सेवा बने आए हुक्म बूझ परम पद पाई इसके ऊपर नहीं विचार जाके मन बसिया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंदन पूजे गुर के पैरे लोक सुखे पर लोक सुहेले नानक हर प्रभा पह मेले सासंग मिल करो आनंद गुण गावो परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत वचन के गुण गाओ प्राण तरन का यह स्वभाव हाथ पैर प्रपेखो नेरा मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावो मान इच्छे नानक फल पावो हल्त पल दोले हो सुवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसै ते साच परिखिया मंत्र नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पह जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभह के तुम्हारी एका टेक रखो मन भाई नानक बहुरणाया वह जाए रिश्ते दूर कहा को जाए उभरे राखन हार त्याय निर्भव जपै सगल भव मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दूख नाम जपत मन होत सुख चिंता जाय मिटै अहंकार तिस जन कहो कोई न पहुंचन हार सिर पर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा
मत पूरी अमर जाकी दृष्ट दर्शन प्रेखद उदरत सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हरूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सुहोत निहाल ताकै निकट न आवत काल अमर भय अमरा पद पाया साध संग नानक हर ध्याया सलूक।

नानक मन परगास अष्टपदी संत संगंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सकल समग्री एक घट माहे अनेक रंग नाना दृष्टाहे नवनीत अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाधन हत्याना कह न जाये चर्च विस्मा तिन देखिया सब दिखाए नानक तिजन सो जी पाए सुअंतर सो बार अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तरन माहे आकाश पया सर्वलोक पूर्ण कृतपाल बाण तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी वैसंतर माहे चार कुंट दै दिशे समाहे तिस्ते पिन नहीं कोठाओ गुर प्रसाद नानक सुख पाओ वेद प्राण सिमृत मैं देख सस्य सूर्य कितर मैं एक बाणी प्रभु की सब को बोले आप डोल न कबहू डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाइय गुण है अमोल सर्व ज्योत मैं जाकी जोत धार्यो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नासो नानक तिन मैं इहो विश्वास संत जना का पिखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुन है सुबचन सर्व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिस की है रैत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करन करावन हार प्रभु जाने अंतर बसे बार पियो भी नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभु ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्तार तिस भावै ता एकंकार अनिक कला लखी नह जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कही है दूर आपे आप भरपूर अंतर्गत जिस आप जनाए नानक तिजन आप जाए सर्वभूता वरतारा सर्व नैना

आज्ञाकारी की निमाया। सब कह मद अलिप्त रह, जो किछ कहना सुआपे कह, आज्ञा वे आज्ञा जाए, नानक जा पावै ता ले समाए। इस्ते हुए सुनाही बुरा, पूरे कहो किने कछ करा, आप ला कर तू तत निकी, आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच, ओत पोत अपन संग्राच, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर हुए ता सो जी पाए। जिसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक हो जान, जो जाने तिस दा सुख हुए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत राया, जन आवन का इह सुआउ, जन कै संग चित आवै नाउ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार।

बावरे के गुण गाओ अष्टपदे पूरे गुर का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पे साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस नित्या गुरु तरंग संत जना की तूर मन मांग आप छोड़ो बेनती करहो साध संग गण सागर तरहो हर धन के पर लेहो भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर सिमर सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी कहे आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल हे रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रभा मिलाए मिट गए बैर भये सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव हाल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निबही खेप हमारी प्रभ की उस्तद करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सुहूत निदान सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब त्यू छपाए स्थान बहुर न हो आवन जा हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता एह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हरना गोविंद भगत कै मन बिसरा कोट अपराध सा संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुट्टै जाकै मस्त कर्म प्रपाए सात शरण नानक ते आए जिस मन बसै सुन लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रवचीत जन्म मरण का दुख निवारै दुलभ देहे तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहि समानी दुख रोग बिन

राम सुख मनी, सब ते उचता की शोभा बनी, नानक हे गुण नाम सुख मनी, सुख मनी सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मनै सुरत होवै मन बुद्ध, मनै सगल भवन की सुध, मनै मोहे चोटा ना खाए, मनै जम कै साथ ना जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मनै मार्ग ठाक न पाए, मनै पथ स्यों प्रगट जाए, मनै मग न चलै पंथ, मनै धर्म से ती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मनै पावै मुख द्वार, मनै परवारै साधार, मनै तरै तारी गुर सिख, मनै नानक पावै ना भेखो। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावै है दरगह मान, पंचै सोहै दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान। जे को कहै करै विचार, करते कह करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझै हुवै सचियार, तवलै उपर के तापार, धरती होर पर होर होर, तिस ते पार तलै कवन जोर। जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया किता होए। केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तो दुपावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मनो राहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिव लाए पार। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तू दुपावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश माल पाखो खाहे, असंख निंदक सिर कर है पार, नानक नीच का है विचार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे हे सिर पार होए। अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखन बोलन बाण, अखरा सिर संजोग वखाण। जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तेव तेव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ। कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तू दुपावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। भरियै हाथ पैर तान देह, पानी धोता है उतर सोखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओह धोए। भरियै मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग, पुनी पापी आखण नाहे। कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवह जाहो। तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान, सुनया मन्या मन कीता पाओ, अंतरगत तीरथ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, वैण गुण कीते भगत ना होए, स्वास्थ आत बाणी ब्रह्माओ, सत सुहाण सदा मन चाओ।
कवण सोवेला वखत कवण कवण थित कवण वार कवण से रुति माहौ कवण जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे होवे लेख पुराण वखत ना पायो का दिया जे लिखन लेख कुराण थित वार ना जोगी जाने रुत माहु ना कोई जा करता सर ठीक साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सा लाही क्यों वर ने केव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई।

ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਗਾਵਹਿ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤਾਰੇ ਸੇਈ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵਹਿ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਨ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨ ਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਬੇਭੂਤ ਹਿੰਥਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕ ਵੇਸ ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਣ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਗੀ ਰਿਧ ਸਿਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵਹਿ ਲਿਖਿਆ ਵਹਿ ਭਾਗ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਬਾਣ ਜੇਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਆਸਣ ਲੋਹੇ ਲੋਹੇ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਉ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ ਏ ਤਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆਂ ਚੜੀਐ ਹੋਏ ਅਕੀਸ ਸੁਣ ਗਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਣ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸਾਣ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਿਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੋਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੂਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ
तिथे सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप ना कथने जाहे। ना ओहे मरहे न ठागे जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे। तिथे भगत वसै के लोक, करै आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथे खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत ना अंत। तिथे लो लो आकार, जिव जिव हुकम तिवै तिवकार। वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। जत पहारा धीरज सुनियार, अहरण मत वेद हथियार। पाओ खला अग्न तप ताओ, भांडा पाओ अमृत तित ढाल। कड़िय शब्द सची टकसाल, जिन कौ नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। सलोक। पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत। दिवस रात दोए दाई दाया, खेलै सगल जगत। चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै धर्म हदूर। करमी आपो आपणी, के नेड़ै के दूर। जिने नाम ते आया, गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। जिने नाम ते आया, गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुखवाक पातशाही दसवीं। शपै छंद त्व प्रसाद, चक्र चिन्ह अर बरन। जात अर पात नहन जेहे, रूप रंग अर रेख भेख। को कह न सकत केहे, अचल मूरत अनभव प्रकाश। अमितोज केहि जय, कोट इंद्र इंद्राण। साहु सहान गण जय, त्रिपवन महीप। सुर नर असुर नेत नेत बन, त्रिण कहत। त्व सर्व नाम कथै कवन, कर्म नाम बरनत सुमत। भुजंग प्रयात छंद, नमस्तवं अकाले, नमस्तवं कृपाले। नमस्तं अरूपे, नमस्तं अनूपे। नमस्तं अपेखे, नमस्तं अलेखे। नमस्तं अकाये, नमस्तं अजाये। नमस्तं अगंजे, नमस्तं अपंजे। नमस्तं अनामे, नमस्तं अठामे। नमस्तं अकर्मं, नमस्तं अकर्मं। नमस्तं अनामं, नमस्तं अतामं। नमस्तं अजीते, नमस्तं अपीते। नमस्तं अबाहे, नमस्तं अटाहे। नमस्तं अनीले, नमस्तं अनादे। नमस्तं अशेदे, नमस्तं अगादे। नमस्तं अगंजे, नमस्तं अपंजे। नमस्तं उदारे, नमस्तं अपारे। नमस्तं सोएकै, नमस्तं अनेकै। नमस्तं अपूते, नमस्तं अजूपे। नमस्तं निरकर्मे, नमस्तं निरपरमे। नमस्तं निर्देशे, नमस्तं निरपेशे। नमस्तं निरनामे, नमस्तं निरकामे। नमस्तं निरतहते, नमस्तं निरकहते। नमस्तं निरतूते, नमस्तं अपूते। नमस्तं अलोके, नमस्तं अशोके। नमस्तं निरतापे, नमस्तं अथापे। नमस्तं त्रिमाने, नमस्तं निधाने। नमस्तं अगाहे, नमस्तं अबाहे। नमस्तं त्रिवर्गे, नमस्तं असर्गे। नमस्तं प्रभुगे, नमस्तं सुजोगे। नमस्तं अरंगे, नमस्तं अपंगे। नमस्तं अगम्ये, नमस्तस्तरम्ये। नमस्तं जलासरे, नमस्तं निरासरे। नमस्तं अजाते, नमस्तं अपाते। नमस्तं अमजबे, नमस्तस्त अजबे। अदेशं अदेशे, नमस्तं अपेसे। नमस्तं निरतामे, नमस्तं निर्भामे। नमो सर्वकाले, नमो सर्वदयाले। नमो सर्वरूपे, नमो सर्वभूपे। नमो सर्वखापे, नमो सर्वथापे। नमो सर्वकाले, नमो सर्वपाले। नमस्तस्त देवै, नमस्तं अपेवै। नमस्तं अजन्मे, नमस्तं सुबन्मे। नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे। नमो सर्वरंगे, नमो सर्वपंगे। नमो कालकाले, नमस्तस्त दयाले। नमस्तं अवर्णे, नमस्तं अमरणे। नमस्तं जरारं, नमस्तं कृतारं। नमो सर्वतन्दे, नमो सत अबंदे। नमस्तं निरसाके, नमस्तं निर्बाके। नमस्तं रहीमे, नमस्तं करीमे।
नमस्तं अनंते नमस्तं महंते नमस्तस्त रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्व सुखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले जाचरी शांत त्वा प्रसाद। अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अभीत है क्रमान है निधान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंत है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजा है अनंत है महंत है अलीक है नृसृक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है पुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पहुणे अनंगिया नाथे नरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पहन पहने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगिया नामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगवेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वरं परम मृदे नमो शास्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगवेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इस्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो एष्ट एष्टे नमो तंत्र तंत्रं। सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तो निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिरद करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद। जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात छंद। अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट छंद त्वा प्रसाद। अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल शांत त्वा प्रसाद। आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरुख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वको पुनकाल यत्र तत्र विराजहि अवतूत रूप रिसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरुख उदार मूरत अजोन आद आशेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख न राग यत्र तत्र दिशा विशा होए फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तामहु नह जाहे सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक।
देव पेव न जानहि जेह बेद और कतेव रूप रंग न जात पात सो जानहि केह जेब तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन चक्र बकर फिरै चत्र चक मानहि पुर तीन लोक चाउ दहै के बिखै जग जापहि जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विसवरच्यो स्वयं भव गणन पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अपूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उसत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रत पार सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जानहि जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत पाख तनेत कोट सिमरत पुराण शास्त्र न आवहि वह चित मधुभार छंद त्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनपौ प्रकाश निस दिन अनास अजान बाहो शाहान शाह राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आपा अपंग गत मित अपार गुणगन उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मेत गत अखंड आलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाडय अंड अंड बाडय चाचरी शांत त्वा प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे आकामे पुजंग प्रयात शांत चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वरती चत्र चक्र भरती चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे चत्र चक्र माने चत्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न काये अजन्मं अजाये न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रथिस आदिश अदृश अकृश भगवती छंद त्व प्रसाद कथते के आशिज दिस है के अभिज पिस है के अकंज करम है के अभंज भरम है के अभिज लोक है के आदित सुख है के अवतूत वर्ण है के विभूत करण है के राजम प्रभा है के धर्मं तुजा है के अशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण है के जगतं कृति है के शत्रं क्षत्रि है के ब्रह्मं स्वरूप के अनुपह अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रं बहीन के एक अधीन के रोजी रजा कह रही में रिहा कह के पाक बेअब है के गैबुल गैब है के अफूल गुना है के सहान सा है के कारण कुनेंद है के रोजी दहंद है के राज कर रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता है के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्या है के सर्वत्र थाप्या है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीमे के परमं फहीमे के आकल अलामे के साहिब कलामे के हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमें सुलसलामे सली खतम उदामे गनीमुल शिकस्त है ग्रीबुल परसुत है बिलंदुल मकान है जमीनल जमान है कमीजुल तमामे रजूअल निधान है हरीफल अजीमे रजायक जितीन है अनेक उतरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुधा है
सदैवं स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्त उपराज हैं, सदा सर्व साज हैं, समस्त सलाम हैं, सदैव अकाम हैं, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, ओं आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबादे अगंजे अगादे सुबं सर्व पागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपोगत स्वरूप हैं, अशेज हैं, अशूत हैं, किनर्कं प्रणास हैं, पृथ्वी प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा है, सदैवं सदा है, विपुगत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, निरुक्त सदा है, विपुगत प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, परम है, अकर्म है, अनाद है, जुगाद है, अजय है, अभय है, अपूत है, अतूत है, अनाश है, उदास है, अतंद है, अबंध है, अपक्त है, विरक्त है, अनाश है, प्रकाश है, निचिंत है, सुनिंत है, अलेख है, अधिक है, अलेख है, अपेख है, अटा है, अगाह है, असंभ है, अगम्भ है, अनिल है, अनाद है, अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है, चरपट शांत त्व प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं तर्मं, सर्वं जुगता, सर्वं मुक्ता, रसावल शांत त्व प्रसाद। नमो नारकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगिया नामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्राय न पुत्राय न सत्राय न मित्राय न ताताय न माताय न जाताय न पाताय। निरसाकं सरीक हैं, अमितो अमीक हैं, सदैवं प्रभा हैं, अजय हैं, अजा हैं, भगवती शांत त्वा प्रसाद। के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमें सुल सलाम हैं, समस्तुल कलाम हैं, के साहिब दिमाग हैं, के हुसनल चिराग हैं, के कामल करीम है, के राज करहीम है, के रोजी दहेंद है, के राज करहेंद है, क्रीमुल कमाल है, के हुसनल जमाल है, गनीमुल खिराज है, ग्रीबुल निवाज है, हरीफुल शिकान है, हरासुल फिकान है, कलंकंग प्रणास है, समस्तुल निवास है, अगंजुल गनीम है, रजायक रहीम है, समस्तुल जुबा है, के साहिब किरा है, के नरकंग प्रणास है, बहस्तुल निवास है, के सरबुल गवन है, हमेशुल रवन है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, परम परम ईस है, समस्तुल अदीस है, अदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेक है, जमीनल जमा है, अमीकुल इमा है, क्रीमुल कमाल है, कि जुरत जमाल है, कि अचलंग प्रकाश है, कि अमितो सुबास है, कि अजब स्वरूप है, कि अमितो विभूत है, के अमितो पसा है, के आत्म प्रभा है, के अचलंग अनंग है, के अमितो अपंग है। मधुभार शांत त्वा प्रसाद। मुन मन प्रणाम, गुणगन मुदाम, अरबर अगंज, हर नर प्रपंज, अनगन प्रणाम, मुन मन सलाम, हर नर अखंड, बर नर अमंड, अनुभव अनास, मुन मन प्रकाश, गुणगन प्रणाम, जल थल मुदाम, अनशेज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गतमित उदार, जल थल अमंड, देशवेश अपंड, जल थल महंत, देशवेश बेअंत, अनुभव अनास, त्रित तर तुरास, आजान बाहो एक सदा हो, ओंकार आद कथनी अनाद, खल खंड ख्याल, गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम, चित चरण नाम, अनशेज गात, आज जिना बात, अनचंज गात, अनरंज बात, अनटट भंडार, अनठट अपार, अडीठ धर्म, अतटीठ कर्म, अनब्रण अनंत, दाता महंत, हर बोल मना छंद त्व प्रसाद। करुणालय है, अरकालय है, खल खंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वं पर है, सर्वं कर है, सर्व पास्य है, सर्वनास्य है, करुणा कर है, विश्वम्बर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खल खंडस है, परते पर है, करुणा कर है, अजपा जाप है, अथपा थाप है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, अमृतामृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, तरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृतामृत है,
अजबाकृत हैं, अमृतामृत हैं, नरनायक हैं, खालकायक हैं, विश्वम्बर हैं, करुणालय हैं, निर्पनायक हैं, सर्वपायक हैं, भाव भंजन हैं, अरे गंजन हैं, रे प्रतापन हैं, जाप जापन हैं, अकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हर्ता हर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्मवस हैं, जस के जस हैं, भुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग तम संग सांत रूपे, नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो सांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादंग विभूते, कलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बंके, अपंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले, अनंगी अकामे, एक अश्री छंद, अजय अलय अपह अभय अभू अजु अनास अकाश, अगंज अपंज अलख अपाख, अकाल दयाल, अलेख अपेख, अनाम अकाम, अगा अटा, अनाथे प्रमाते, अजूनी अमोनी, न रागे न रंगे, न रूपे न रेखे, अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे, पूजंग प्रयात छंद, नमस्तुल प्रणामे, समस्तुल प्रणासे, अगंजुल अनामे, समस्तुल निवासे, निरकामंग बेभूते, समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मंग प्रणासी, सुतर्मंग बेभूते, सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी, क्रीमल कुनिंदा, समस्तुल निवासी, अजायब बेभूते, गजायब गनीमे, हरियं करियं क्रीमल रहीमे, चतर चक्रवर्ती, चतर चक्र भुगते, स्वयं भव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं प्रणासी, दयालं स्वरूपे, सदायंग संगे अपंगं बेभूते, चतरचक्रवर्ती, चतरचक्र भुगते, स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते, दुकालं प्रणासी, दयालं स्वरूपे, सदायंग संगे अपंगं बेभूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवें त्वा प्रसाद सवैये, श्रावक शुद्ध समूह सिधान के, देख फिरयो घर जोग जति के, सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधिक, संत समूह अनेक मति के, सारे ही देश को देख रहयो मत, को न देखियत प्राणपति के, श्री भगवान की पाए कृपा हुते, एक रति बिन एक रति के, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सुवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन कौ जात निवारे, भारी पुजान के भूप भली बेद, न्यावत सीस न जात बिचारे, एते पहे तो कहा पहे भूपत, अंत कौ नागे ही पाए पधारे, जीत फिरा सब देश दिसान को, बांजत ढोल मृदंग नगारे, गूंजत गूढ़ गजान के, सुंदर हिंसत ही हाय राज हजारे, भूत पवेख पवान के भूपत, कौन गने नहीं जात बिचारे, श्री पात श्री भगवान भजे बिन, अंत कौ अंत के ताम सिधारे, तीर्थ नान दया दम दान, सो संयम नेम अनेक बसेख है, वेद पुराण कतेव कुरान, जमीन जमान सबान के पेख है, पौन आहार जति जात तार, सब सो विचार हजार क देख है, श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक न लेख है, सुध सिपाह दुरंत दुबाह, सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे, भारी गुमान परे मन में, कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे, तोर अरीर मरोर मवासन, माते मतंगन मान मलेंगे, श्री पात श्री भगवान कृपा बेन, त्याग जहान निदान चलेंगे, वीर अपार बड़े बरियार, अब चारे सार की तार पशैया, तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया, गाड़े गड़ान को तोड़न हार, सो बात नहीं चक चार लवैया, साहिब श्री सबको सिरनायक, जाचक अनेक सो एक दिवैया,
दानव देव फनेंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाड जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इस नानक जादिक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फिर न देह तरेंगे कहा पयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नात फिरियो लिए सात समुद्रन लोक गयो परलोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठ कह ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं काहू पशा को सीस निवायो को बुतान को पूजत है पश को मेर तान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पश को मृतान कौ पूजन तायो कूर क्रिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाह दसवें कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझे उबरिया है मरण काल का त्रास निवरिया है हु जो सदा हमारे पच्छा श्री आस तो जो करे हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दोष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दायत जचन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो घाट घाट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान है घाट घाट के पट पट की जान है जब उद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तार है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत बेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव
आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा के बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप सरूपा रंक पायो राव कहि भूपा अंडज जेरज से तज कीनी ओत भुज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संकर एकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जीते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे पुरख जवन पग परे ते हारे तिनके तुम संकट सब तारे जो काल को एक बार ते आय है ताके काल निकट न है आय है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके पाप तनक मोह हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे लिहो उबारी सर्ब ठाउर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता केल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस तुज जब पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावै सोई दुख न तसै व्यापत कोई अड़ल सुने गूंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकटना तिन नर के रहै हो जो याकी एक बार चौपाई को कहै चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजै अर्ध सहस फुन तीन कहि जै भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीरस पद्रव ग्रंथ सुधारा सोइया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक ना जाने ओ श्री अस पान कृपा तुमरी कार मैं ना कहे ओ सब तुहे बखाने ओ दोहरा सगल द्वार को छाड़ कै गाहे ओ तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आसो गोविंद दास तुहार।

विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खिडह विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगह पुराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़।

0: कोलू चरखा चक्की चक थल वारुले बहुत अनंत लाटू मधाणियान गा पंखी पौंदियां लैना सा सूए चाड़ पवाइये जंत नानक पौंदिया गणत नान
1: बंधन बंद पवाए सोए पै करत नचे सब कोए नच नच हसे चले से रोए उड़ना जाई सदना हो नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिन मन पाओ पौड़ी नौ।

0: मोन विगूता क्यों जागे गुर बिन सूता। पग उपे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर छाई पाई। मूर्ख पत गवाई
1: लावा किथाय न पाई, रह बेबाणी बड़ी मसाणी। अंध न जाने फिर पुछताणी, सतगुरु भेटे सो सुख पाए। हर का नाम मन वसाए, नानक नजर करे सफाए। आस अंधे से तेने केवल, आओ मैं शब्द जलाए। पौड़ी भगत मन पाऊं।

करी न होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ जात मह जो जोत मह जाता कलकला भरपूर रहया तू सच्चा सब सिफ सवाल।

नानक मेर शरीर का एक रथ इक रथवा हो, जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझह ताहे, सतजुग रथ संतोख का धर्म गैरथवा हो, त्रेता रथ जतह का जोर गैरथवा हो, द्वापर तप का सत गैरथवा हो, कलयुग रथगन का पूर गैरथवा हो।

हथ टिका तेड़ धोती कखाई हथ छुर जगत का साई नील बस्त्र पैर हुए प्रवान मलेश धान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देखे चौका कड़ी कार उपर बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्या साडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली भरेन कहो नानक सच ते आई है सच हो है सच पाई पौड़ी।

रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए परवा नहीं किसे केरी बाज सचे नहीं। त्रवाटी ऊपर खर्च मंगा जब

0: सुध
1: कार्योग ग्रुप की साजन परम परिसाद संयोग आगे हो जो अमृत वेले दी हाजरी भरते हुए पावन पवित्र आसन की वार का कीर्तन आप जी ने श्रद्धा भावना के नाल सरवण किया है। पावनित कार्योग भाई साहब भाई जसवीर सिंह जी खुश दिल तना पासों पावन पवित्र मुख वाक की कथा सरवण करे जी। बुलाओ फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक वाहिगुरु साहिब जी दीन दर्द निवार ठाकुर रख जन की आप तरन तारन हर निद दुख न सके बेआप साधु संग भजो गोपाल आन संजम किछ न सूझै एह जतन काट कल काल आदे अंत

मानस जाए अंधार, चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक, ताण मान दीबाण साचा नानक की प्रभ टेक। वाहिगुरु। बेलावल महला पंजवा, पानी पखा पीस दास कै

अग्नि मह जाल। संत जना का शोहरा तिस चरनी लाग, माया तारी शतर पत तिन छोड़ो त्याग। रहाओ संतन का दाना रूखा, सो सर्ब निदान ग्रह शत साकत छत्ती प्रकार ते बिखू समान।

बेखम नदी जाए तरणी सो कहो टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै

हरत्या है शांत हुए। हर जियो अपनी कृपा करे ता वरतै सब लोय। उठै जिया जुगत होय धरनी नो सिगार होय। नानक एहो जगत सब जल है जल ही ते सब कोय। गुर प्रसादी को विरला बुझै सो जन मुक्त सदा होय। पौड़ी सच्चा विप्रवाहु इको तू तनी तू सब किच आपे आप दूजे किस गणी। मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुदमणि आवा गौण रचाय उपाई मेदनी। सतगुर सेवे अपना आया तिस गणी। जे हम मैं विच हो जाए ताके ही गणत गणी। मन मुख मोहे गुबार ज्यों भुला।

जगतै की तिख जाय। महला तीजा बाबीहा पिन्नी रैन बोलिया सहजे सच सुभाए इहो जल मेरा जीव है जल बिन रहन न जाए। गुर शब्दी जल पाई है विचो आप गवाए नानक जिस बिन चसा न जीव दी सो सतगुर दिया मिलाए। पौड़ी

लख चौरासी मेदनी तुझ ही ते होई। एक राजे खान मलूक कह कहा वह कोई। एक साहा सदा वह संच धन दूजै पत खोई। एक दाते

छुटक जाहे मेरे प्राण, तू सुखदाता बेअंत है, गुणदाता निधान। नानक गुरमुख बख्श ले, अंत बेली होए भगवान। पौड़ी आपे जग तो पाए कै, गुण अवगुण करे विचार।

ला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मथन नानक जो प्रभ पाणिया सच्चे दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुरु सेव सच संभालिया अंत खलोआ आय जे सतगुर अगै घालिया ओहे न सकै जमकाल सच्चा रखवालिया गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया मन मुख विण नावै कूड़ियार फिर है बेतालिया।

सच्चै शब्द निहालिया, नानक नाम निदान है, पूरे गुर देखा लिया। श्लोक महला तीजा, बाबी है हुक्म पछाणिया,

ना तीरथ नहाया, हथी सिर खुहाय ना पद कराया, कुचिल रह दिन रात शब्द न पाया, तिन जात न पत न कर्म जन्म गवाया।

आया पूछ ना सके कोई जा खस में पाया नानक सच सलाहे लिखिया पाया। श्लोक महला पहला।

मंगह मंगते किते मंग मंग जाहे। महला पहला सौ मन हस्ती क्यों गुड़ खावे।

गुर कै शब्द सलाही है अंतर प्रेम प्यार विन प्रीति भगत ना हुई विन सतगुरु ना

नानक उथै जानिए है। साहा केई पातशाह पौड़ी इक ना गली जंजीर बांदर बाणिए बदे छुट्टे सच।

पौड़ी पढ़िया लिखेदार लिखा मंगी है विण नावे कुड़ियार औखा तंगी है औकट रुदे राह गलियां रुकिया सच्चा वे प्रवाहु शब्द संतोखियां गहर गंभीर अथाहु हाथ न लबई वुहे मुहे चोटा खाहु विण गुर कोई न छुटसी पत से

मास उपजय मास हो सब साक। सतगुर मिले हुक्म बुझिए तां कुआ वैरास। आप छुट्टे नह छुट्टिए नानक बचन विनाश। महला पहला। मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने। कौन मास कौन साग कहावे किस पह पाप समाने। गेंडा मार हूम जग किए देवत्या की बाणी। मास छोड़ बैस नक पकड़ है राती मानस खाणी। फड़ कर लोका नो देख लावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे। नानक अंधे स्यों क्या कहिए कहे न कहे अबुझे।

कर्पूर है कृपा धारी पर पूरी लोच हमारी धन धन साहिब ग्रंथ साहब के पावन पवित्र लाजपुरा दरबार दाजरिया बड़े खुशियां भरे मौके से भर के बख्शा लै रही परम सत्कार जो साध संग जीओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। थोड़े मिनटों में आप आनंद कार जी रस्म आरंभ कर जा रहे हैं साहिबां दी बख्शे द्वारा जिस दे विच सुभाग जोड़ी दे नां हन जी अर्शदीप सिंह ते हरमन कौर। अर्शदीप सिंह जी सपुत्र हन सरदार गुरचरण सिंह ते बीबी राजेंद्र कौर जी दे बच्ची हरमन कौर सपुत्री है बीबी परमजीत कौर जी दी। सो सब तो पहला मैं आप सब नूं सिख गुरुद्वारा सैनोजे की प्रबंधक कमेटी तो इतों की समूह संगत तो इतों के सारे कीर्तनी जथे तो ग्रंथी सिंह वालों जीवाएं आखदा जी जो गुरद्वारा जो साडा है ये सब तो वड्डा है कैलीफोर्निया तो सब तो आलिशान भी है। ये ठीक है असी नॉर्थ तो साउथ हॉल दो मंजिल बना जा रहे हैं वह भी तो होर भी आलिशान हो जाना। वो आनंद कार्ज जी रस्म के कुछ हिस्से ने जी जोड़ी वास्ते भी तो बाकी वास्ते भी। पहला ऐसा होएगा जी इलाही बाणी दे शब्द का कीर्तन शब्द का पहलियां तो कहान कीता लोड़िए कम सवार पै आखिए काल दे सवार सतगुर सच आखिए। ये शब्द आप हर शुभ काम शुरू करन तो पहला गाउंदे हाँ जां सुणदे हाँ जां पढ़दे हाँ बख्श लैंदे हाँ गुरु पास के सानू रमता दी बख्शिश कीती जावे। उस तों बाद फिर अरदास होगी शब्द का कीर्तन कर रहे होंगे भाई साहब भाई प्रतपाल सिंह जी रसीला हजूरी रागी श्री मंगला साहब दिल्ली वाले ते हजूरी रागी सिख गुरद्वारा सैनो दे ज्यों ही शब्द का कीर्तन समाप्त होया त्यों ही अरदास होगी जिस दे विच सुभाग जोड़ी ते उन्हां दे माता पिता ही केवल खड़े होंगे बाकी संगतां जिवें आप जी ने बैठे हो इस तरह मड़े प्यार श्रद्धा की भावना नाल चुपता दान बख्शते हुए आप जी ने बैठे रहना जी। अरदास उपरंत भाई साहब नवनीत सिंह जी हुक्मनामा लैणगे। हुक्मनामा आपां नूं पता है सारिआं नूं हुक्मनामे दे आखीर ते जदों समाप्ति हो गई तां ओह इशारा करनगे पल्ले दी रस्म वास्ते। सो असीं बीबी परमजीत कौर नूं बेनती करांगे कि ओह अर्शदीप सिंह जी दा पल्ला जो है बच्ची हरमन कौर नूं पकड़ाउणगे जी। ते इत्थे पल्ले दे वास्ते दोनों नूं जोड़ी नूं बेनती है उन्होंने अपने अपने सिरे तो फट के रखना सारे लोग अंधकार रस्त विच ते पल्ले रस तो बाद फिर असली हिस्सा शुरू हो जाना नामां दा पाठ। सुभाग जोड़ी ने बैठ के सरवण करने लई फैसला किया है कल्ले कल्ले नाम दा पाठ होगा जी। पहली नाम दा पाठ जदों होया उसके अखीर ते अखीरली तो दो बारी दोहराई जाएगी ते तंत्र गुरु नानक साहब जी का नाम जो दूजी बार आया तो वह इन्हां वास्ते संकेत होगा इंडीकेशन होगी कि जो सुभाग जोड़ी ने मत्था टेक के ते खड़े होकर परिक्रमा पहली शुरू करनी है मेरे वाले पासे नूं आ के भाव अपने सज्जे मोढ़िया नूं तंत्र गुरु ग्रंथ साहब जी वाले पासे रखना ते जिस दे विच अर्शदीप सिंह अगे अगे ते बची हरमन कौर पिछे पिछे चलेगी सारी मर्यादा गुर मर्यादा है ये जो सिख रहत मर्यादा दे विच भी लिखी हैगी है ते सारे वर्ल्ड वाइड ये होंदी लागू जी। सो पूरी परिक्रमा दे वेले कीर्तन भी हो रहा होना हर पहली लाम ते सुभाग जोड़ी ने वापस जा के अपने थां ते मत्था टेक के फिर बैठ जाना दूसरी पाठ दूसरी लाम का पाठ सरवण करन वास्ते। फिर इस तरह दूसरी शुरू हो जाएगी दूसरी परिक्रमा फिर तीसरी ते चौथी ते चार लावां ही हन ते चार ही परिक्रमा ने सिख धर्म दे अंदर आपां चेते रखिए। उस बाद सुभाग जोड़ी ने विराजमान रहना बैठे रहना कुछ मिनटों वास्ते होर क्योंकि इलाही बाणी दे कुछ शब्द होर जो हन मर्यादा दे विच आउंदे उन्हां दा कीर्तन भी होना। उस दे बाद अरदास बेनती करेगा अरदास तो पहला जो आप बना रहे हैं साउथ ते नॉर्थ हाल दो स्टोरी उस वास्ते असीं हर विआह ते सेवा वास्ते बेनती करते हैं। वो माया जो है कीर्तन जथे की पहला चक ली जाती है
ਇਸ ਜੋ ਪੇਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀਰ ਉਸ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੁਦੇ ਪੈਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਲਈ। ਆਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਸਲੋਕ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੋਕ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧਰਤ ਮਾਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋੜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਲਈਏ ਤੰਤਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਾਖੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म हजू करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर।

को सिखवाते, गुरु कर आए बाणा भी पा लिया अमृत भी छक लिया, पर जे अंदरों कपट ना गया तो कोई फायदा नहीं। अंदरों निर्मल बाहरों निर्मल, सतगुरु ऐसी कृपा करो साडे सारयां दे मन धुप जाण। बाणी धोंदी है, बाणी पाक पवित्र करती है, बाणी निर्मल करती है। वध तो वध बाणी पढ़नी चाहिए है, गुरसिखां दी गुरमुखां दी संगत करनी चाहिए है।